जाइए प्रभु कैदा, आन न भी आ तेरी संसद, तेरे बिना होर कोई सुझदा नहीं, क्योंकि होर किने बाह फड़नी है, जिदे नाल प्रीता पाइया ए प्रीता कुड़िया हो गईया, ए निरंकार तेरे चरणा दी प्रीत सच्ची है, सारे दरगाह के तेरी चरणा विच पुजे हां, इसलिए नानक अवर न सुजई हर बिन बख्शन हार, तू बख्शिंद है, तू बख्शिशां दा सागर है, जे मेरे पापां दे दो चार बेड़े डुब भी गए सागर नूं की फर्क पवेगा,

ज्ञान जन करके पीरात असुर नानक नाव बाज सुनात राग गुंजरी महिला चंपा हरके जन सदगुर सदमुखा बिना घरों गुरपास हम कीरे चरम सदगुर शरणाई।

गुरमत नाम मेरा प्राण सहाय, हर कीरत हमरी रहरास रहाओ। हर जन के वड़ पहाड़े जन हर हर सरदार प्यास, हर हर नाम मिले प्रकाश मिल संगत गुण प्रयास। जन हर हर हर रस नाम न पाया, हे भावहीन जम पास। जो सतगुर शरण संगत नहीं आए, त्रिज जीवे त्रिज जीवास। जन हर जन सतगुर संगत पाए, तिन तौर मस्तक लिखिया लिखास। धन धन सत्संगत जत हर रंग पाया, मिल जन नानक नाम प्रयास। राग गूजरी महला पंज, पाए रे मन चितवें उद्यम। जा आराग जियो परया, सैल पुत्र में जन को पाए। साका रिजक आगै कर धरया, मेरे माधव सब संगत मिले सो करया। गुर प्रसाद परम बल पाया, सूके काष्ठ हरिया रहाओ। जनन पिता लोक सुख बनता, कोय न किसकी धरया। सिर सिर रिजक संभाए ठाकुर।

राजासा महला चौथा सो पुरुष एकता ओंकार सतगुर प्रसाद सो पुरुष निरंजन हर पुरुष निरंजन हर अगमान मातार सत्य हमें सत्य हमें खुद जी हर सच्चे सृजनहार सब जी तुम्हारे जी उनकिया का दातार हर त्यावा।

तस्मिन् च वै कोन राष्ट्रकाटा सीता श्रीयस्येत्यर्थे ईश कोपं दृष्टवृन्दे पहि सवेण्यान् बधाई दै तन्न तन्लोकं ते राजा दुर्जनदा श्रीमुनिवाजा अखिल पमंडे सचनारे दास्यां स्वदे उपकारे तदीयोपाच जयंती चौबै हमरी करो आदय रक्षा पूर्ण होए चित की इच्छा सब चरण मल हमारा अपना जान करो प्रपार हमरे दुष्ट सब है तुम कहो पाप आदय मोए बचाओ सुखी बसे मोरो परवार सेवक सेक सब है करतार मोरचा जित कर लै करिए सब बैरन को आसु रहिए पूर्ण होए हमारी आशा तोर भजनती रह प्यासा तुम्हें छाड़ कोई अगर न पियाऊं जो भर जाऊं सो तुम देखो सेवक सिख हमारे तारी है तुम

तुमरा लहन गाय पसारा एक दुसरा कथन संसारा एक रूपा अनुप स्वरूपा अनंत भयो राव कही कृपा अंडज जेरज शेतर की उत पुरखान बहुर रखी तुम फूल राजा हुए बैठा तुम

एक बारा जिनको मैं संभारा आल्फा से ताए उबारा जिन नारा नाम तिहारो का दार्ग दुष्ट डोब तेरा खड़ग के मैं शरण से आरी आपा दे उबारी सर्व टोर हो साई दुष्ट डोब से लो बचाई कृपा करी हम पर जग माता ग्रंथ करा पूर्ण शुभ रहता निर्वेक सजल दे को हरता दुष्ट दुखियन को क्षय करता श्री अस्पोजा जप हे दयाला पूर्ण करा ग्रंथ काला मन वांछत फल पावे कोई भूख न से व्यापक कोई अड़ल सुने गो जो जाए सोरख न पावे सुने मूर्ख चलाए चतुर पायावे भूत दर्द पहो नित्य नर के रहे वो जो जाती एक बार चौबई को कह चौबई संबत सत्र सह सुनिजय अर्थ सह सून किजय भाद्र सुधी अठवी रविवार तीर सुद्र ग्रंथ सुधारा एस श्री चरित्रो पखयाने त्रया चरित्रे मंत्री भूप संवादे चार सौ पांच चरित्र समापत मस्त सुख मस्त दोहरा दा जान कर दास पर जय कृपा पार आप बैरा कमोए मान क्रम वचन विचार चौबई नैना गलेश प्रसन्न नाऊ किशन विशन कमू न क्याऊ कान सुने पहचान तिनसो जब लागी मोरी पल इनसो महाकाल रखवार मारो महालोक

अर्नाडों तुम मन मेरे तू सब विसारण अंगीकार ओ करे तेरा काज सब सवारण सबना गल्लां समरत स्वामी सोचो मनो विसारे कै नानक मन मेरे सदा रोण नाले साचे साहेबा क्या नाई धरते है भक्तों तेरा सब किशै जिस देश हो पावे सदा सिर सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिनका मन वसया वाजे शंत घेरे कै नान सचे साहेब क्या नाई धरते है साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिन पुकरा सब गवाइया कर शांत सुख मन आए वसया जिन इच्छा सब पूजाइया सदा प्रवान किता गुरु बिटो जसिया ए वड़े आईया कै नानक सुनो संत शब्द करो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंचावद धरस भग है धरस भग है शब्द वाजे करा जित घर धारिया पंच दूत तुद वस कीते काल अंत कमारिया घोर कर्म पा तुम जिनको से नाम हर कै लागे ऐ नानक तैं सुभ होआ तित घर अनहद वाजे मुंदावणी महला पंजा आग विच तैन वस्तु पइयो सात संतोख विचारो अमृत नाम ठाकुर पियो जिसका सब साधारो एको खैवे जेको पुछे जिसका होए उधारो ए वस्त जी ने जाई नित नित रख और धारो हम संसार चमल प्रिय सब नान

एक दिव्य मूर्ति आई। उस दिव्य मूर्ति ने कहा, पिता श्री मेहता कालू ऐसे न्यासी

कुछ मिलन दी खुशी, थकावट भुल गई, चेहरे ते रौनक आ गई। ए सन्यासी उठ के खड़े हुए, अपनी कुटिया वाल चल पए। अगो इन्हां दी सिख्या दाता मिले, सिख्या दाता कहन लगे, इस सन्यासी पिता मेहता कालू नूं, ऐ बालके तेरे चेहरे ते बड़ी खुशी, इंज जापदा है जिवें तैनूं कुछ मिलिया। तां इह सन्यासी कहन लगे, हां सिख्या दाता, अज मैनूं मेरे तप दा फल मिल गया है। ਇਹ ਵਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਨਾਰਾਇਣ ਆਪ ਮੇਰੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਜਨਮ ਲੈਣ।

इस सन्यासी पिता मेहता का लू ऐ बाल के त्वाड़ा भी दूसरा जन्म होवेगा। हुण तुसी सन्यासी हो, दूसरे जन्म विच ग्रिस्ती होवोगे, फिर त्वाड़े कार्य हो नारायण आप प्रगट होवेगा।

पुत्र बन के जन्म लिया पर मैं ही तेनू पहचान ना सकिया कितना चिर सिर धरती ते रख के रोंदे रहे पर जद सिर चुकया पिता मेहता कालू जी हैरान हो गए कमरे अंदर दिया दे रहे ना गुरु नानक साहब ने ना कोई प्रकाश एकदम उठ के कमरे विच बाहर आए और अपनी घरवाली

मैं अरदास की थी, मेरे घर पुत्र बन के जन्म ले, तू मेरे घर पुत्र बन के जन्म ले, तू मेरी गोद में खेड़े है।

एकदम उठ के खड़े हो गए और धन गुरु नानक साहब ने अपने पिता दियां बाहां पकड़ लिया, अपने पिता नु गल दे नाल लगाया ते नाले ए कहया, पिता जी ए नानक तुहाडे पैरां ते

अपने घर विच वड्डियां दा आदर मान करना, पर देखदे आं एक मां बाप अठ धीआं पुत्रां नूं पाल सकदा है, पर जद उही माता पिता बुढ़े हो जाण ते ओ जिहड़े अठ धीआं पुत्र ने ओ एक माता पिता की पालना नहीं कर सकते। किन्नी अजीब गल है, एक मां बाप इन्ने बच्चे पाले ते जद बच्चे वड्डे हो जाते ने ओ फिर माता पिता नूं कुछ दे नहीं सकते। अपने धीआं पुत्रां ते हजारां रुपए खर्च कर देंगे, पर जद बुढ़े माता पिता कुछ मंगण ते फिर नूं पुत्र गुए कहिंदे ने पिता जी हाथ तंग है। कैसा आखिर

और माता पिता ये जरूर कहना चाहवांगे कि जब बच्चे छोटे होंदे जिथे उन्हां नूं चंगा खाना देंदे हो, चंगा कपड़ा देने की कोशिश करते हो, चंगी तो चंगी

इस बुढ़ी मां दा सहारा छोटा जिहा पुत्र मालक दा पाणा वरत्या। दुखां ने सुमाता

सोना चाहिदा है तेनू तेरा पति परमेश्वर मिलिया है, रोना मैनू चाहिदा है जिनू अजे पति परमेश्वर मेरा मालक ओ प्रभु नहीं मिलिया। मालक रहमत करे मैनू भी मेरा पति

नानक सर वाले पूर्ण महापुरुष दशा करते सन। अपने कारोबार तो जान तो पहला मालक तो आ गया ले कि ए मालक ये काम तू करवाए। कपड़ा पहनन तो पहला धनवाद कर है मालक तेरा दिता पहन रहे प्रशादा छकन तो पहला उस प्रभु का धनवाद कर तेरा दिता।

बेसमझ। एक राजे दी लड़की सी, परमात्मा ने उदे लेख ही ऐसे लिखे, उदे संजोगां दे विच कोई लड़का नहीं सी, उदे कर्म ही ऐसे सन कि उदी जिंदगी विच कदे घर वस ही नहीं सी सकदा। ते साथ संगत कितनी नियामत है, कईयां नूं वाहिगुरु घर वसण दा चांस दिंदा है, ओ वाहिगुरु दी दित्ती होई दात नूं घर उजाड़ के रख दिंदे ने। कहिंदे ने कि ओ जिहड़ी बच्ची सी जदों जवान होई, वर लायक होई, राजे ने उसे मंगनी कीती, बड़े राजिया नूं बुलाया, राजकुमार आए, उस बच्चे का स्वयंवर रचिया गया ते सात संगत उदे कर्मा च ए लिखिया सी कि जेड़े भी लड़के नाल उदी मंगनी होएगी वो लड़का संसार तो चला जाएगा। मंगनी होई, जदों शादी का दिन तय किया गया, बरात तो कुछ दिन पहला वो बच्चा दुनिया तो चला गया, बड़ा दुख होया, राजे दे घर भी बड़ा दुख मनाया गया, इस लड़की ने भी बड़ा दुख मनाया। चलो साल बीतिया, एक बार फिर स्वयंवर हो गया, फिर उस तरह बरात तो चार दिन पहला लड़का फिर दुनिया तो चला गया। इसे तरह राजे ने 12-13 बार लड़की का वर ढूंढिया, ते जेड़ा भी वर ढूंढदा सी ओही ओ दुनिया तो चला जांदा सी। आखिर विच अखां विच हंजू

जो गुर कहे सोई पल मानो हर हर कथा निराली। भाई जो गुरु कहंदा है ओ मनो, जे गुरु रोकदा है किसे पासे तो रुक जाओ, क्योंकि गुरु हमेशा भला सोचदा है। पर अजामल दा मन अज वस विच ना रहा। अजामल कहन लगा केड़ा गुरु नु पता लगना है, अज बाजार विच चलांगा। अजामल ने घरों तैयारी की थी, घरों तुर पिया अजामल, शहर च दाखिल होया, बाजार विच वड़िया। ए बाजार सी वेसवावां दा, कलावती नाम दे इक वेसवा हार शिंगार करके बैठी है। अजामल ने उस वेसवा नु देख लिया, तुर गया, पर उदा मन उस वेसवा वाल रह गया। पाठशाला पहुंची है, पर अजामल दा मन अज पढ़ाई विच नहीं लगा। पढ़ाई पूरी हुई, अजामल वापस तुरिया। वापस फिर उसे बाजार विच निकलिया जिड़ा वेसवावां दा बाजार सी, ते कलावती नाम दी वेसवा ओ हाली भी बैठी है। उस वेसवा नु देख के अजामल फिर वापस अपने घर परत आया। हुण रोई दा काम बन गया, वेसवावां दे बाजार विच आना, वेसवावां दे बाजार विच जाना, ते हौली हौली ए अजामल कलावती नाम दी वेसवा कोल जान लग पिया। ता मन जिहड़ा सी पढ़ाई वल्लों हट गया, शरीर भी हुण तंदुरुस्त ना रहा, पढ़ाई विच भी पिछे। गुरु नु पता लग गया कि अजामल जिहड़ा है ए हुण पाप करन लग पिया। भाई गुरदास जी बयान करदे ने, पतत अजामल पाप कर जाए कलावतनी दे रहे।

दुर्मत दहया, गुरु तो बेमुख हो गया, गुरु दा कहना नहीं मनिया ते पाप कमान लग पे है। गुरु नु पता लग गया, गुरु ने समझाया अजामल, वेसवा दे कोल जाना बंद कर दे, पढ़ाई कर, अपना मन पढ़ाई विच लगा। अजामल ना मनिया, अजामल दे पिता नु पता लग गया, पिता ने सोचिया अजामल दा व्याह कर दे, वेसवा कोल जाना बंद कर देवेगा। अजामल दा व्याह हो गया, पर वेसवा कोल जाना बंद ना कीता। इसे गम दे विच अजामल दा पिता चल वसिया, पिता मर गया। राजे ने अजामल नू अपने दरबार विच राज पंडित दी नौकरी दे दी थी, पर अजामल ने उस वेसवा कोल जाना फिर भी बंद ना कीता। राजे नू पता लग गया, राजे ने समझाया, देख अजामल, तू राज पंडित है, तू लोकां नू उपदेश देना है, जे तू माड़े काम करेगा तो लोकां नू किवें समझावेगा।

पुत्र पैदा हो गए, अजामल करदा की है, जंगल विच चला जांदा है, जाल लगांदा है, पंछी पकड़दा है, कुछ पंछी मार के सब्जी बना लेंदे ने, कुछ पंछी वेच के आटा दाल ले आंदे, गुजारा करदे। जेड़े पुत्र पैदा हुए ओ भी माड़े कर्म करदे ने, अजामल दा शरीर रोगी हो गया, क्यों के गुरु साहिब जी बाणी विच कहंदे ने, दुख तदे जा विसर जावे। जदों इंसान परमेश्वर नूं भुला देंदा है, परमेश्वर दा डर मन विचों कट देंदा है, फिर पाप करदा है, ते जिहड़ा पाप करन वाला है अंत ओह इन्ना दुखी हो जांदा है कि पछताण दा मौका भी नहीं मिलदा। कई वारी अजामल शरीर रोगी हो गया, पुत्र भी पापी निकले, छे पुत जाए वेसवा, उस वेसवा ने छे पुत्रां नूं जन्म दिता, पापां दे फल इच्छे लिया, पाप कीते सन ते पापां दा फल पाप ही मिलिया, अत दे दुखी हो गए ते हुण सोचदे ने, गुरु दा कहना नहीं मन्या, पिता दा कहना नहीं मन्या, ते आप भी दुखी ते औलाद भी

जंगल चला गया। दूसरे पास से कलावती वेसवा जेड़ी अजामल दी घरवाली बन चुकी, घर दे बाहर खलोती है। कुछ महात्मा महापुरुष उस पास से आ निकले। कलावती ने उन साधुआं नू संतां नू अपने घर बिठा लिया। आप बाहर खड़ी होके अजामल दी उड़ीक करन लगी। थोड़ी देर बाद अजामल आया, चादर मोड़े ते मारी। कुछ पंछी ने चादर विच चादर खून दे नाल भरी हुई। कलावती कहन लगी अजामल, ए जड़ी पापां दी पंड लियांदी है इहनू बाहर रख दे। घर संत आए ने, सारी उम्र पाप कमाए ने, किसे दा कहना नहीं मन्या। कोई चंगे कर्म कीते ने किसे वेले दे, कि अज महापुरश साडे घर आए ने। आओ संतां दी शरण पै चलीए, हो सकदा है।

गुरमुख नाओ नारायण कया। जदू ये गुरुद्वारे गए, गुरु दे द्वारे गए, ते महापुरुषा ने अजामल दे सतवें पुत्र दा नाम नारायण रखिया, गुरमुख नाओ नारायण कया। गुरमुखा ने महापुरुषा ने कहा, अजामल तेरे पुत्र दा नाम असी नारायण रखिया है, इस नु तुसी

वेख पुत नारायण बोले शया। जमदूता नु देख के डर गया, पुत्र भुल गया, ते उची सारी कहंदा नारायण बचा। ते नारायण परमेश्वर दा नाम है।

0: देख है क्या गुण तेरे साथ माली शुरुआत है मैं मूर्ख की केत की बात है कोट अपराधी दरिया रे गुरु नानक जिन सुनिया पे किया
1: से फिर गर्वास ना पड़े।

भाई बहुत मग जो बास बस मुकुरमा है जैसे छाई तैसे ही हर बसे निरंतर कटगी खोजो पाए बार पीते बार पीते एक जानो।